0: झगड़ा मत कीजिए।
1: ये चुप क्यों हो जाए?
2: प्लीज
1: सुनीता, गलती इसकी है, इसने इनकी बीवी को बेसरा कहा, इनके लिखे हुए गाने को थर्ड क्लास कहा, बकवास कहा। अगर आप अपने आप को 30 मार खास समझते हैं तो खुद क्यों नहीं गाते? कम ऑन, लेट्स सी।
3: हाँ गाओ, आ जाओ अखाड़े में, बेजू बावरा की औलाद।
1: आइए आइए।
3: क्यों फटती है?